0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्यामलिङ सेङजा।
0: रेडियो आदिखोला 105.4 समयको ख्याल राखौं। समयको ख्याल

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: श्याम धीराज मल्ल संयोजक एवं वीआईपी टोल टोल विकास संस्था परिवार वालिङ आठ आफ्नो टोल सफा राखौ टोलवासीको परिचय दिउ साथै पैदल यात्रा महानुभावले फुटपाथको प्रयोगमा ध्यान दिनुभए सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं।

विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्यामलिन स्याङ्जा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ घ्याङलिङ स्याङ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: घनश्याम सुवेदी गाउँपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेन्दीखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय फेन्दीखोला।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: मेघराज गैरे प्रिंसिपल एवं पाइनियर्स हायर एजुकेशनल एकेडमी वालिङ स्याङ्जा।
0: गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्ध

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ आठ ग्याङलिन स्याङ्जा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: तुलसीराम रेग्मी नगर प्रमुख, देवी अरियाल उप प्रमुख, प्रदीप चन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुतली बजार।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: याम प्रसाद अधिकारी प्रदेश सभापति नेपाली कांग्रेस संघ क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश।

0: चाड़ पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन पाने इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरोपेन्स घर मात्र होइन रंगाउन होस् सपना पनि।
1: सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब थप खबरहरू। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ, तीनजना घाइते भएका छन्। आज बिहान जुनी चाँदे गाउँपालिका 2 गौरी कुवामा

0: रेडियो आधीखोला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ 1 राममाछा शोरूम, भिरकोट 1 बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड़ नगरपालिका जाने बाटोमा। मोबाइल 9855309988।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अर्जुन प्रसाद खनाल सभापति एवं नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय परिवार।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुंग उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साइंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नुवा दत्त अर्याल अध्यक्ष एवं भिरकोट उद्योग वाणिज्य संघ परिवार भिरकोट स्याङ्जा।
2: आफ्नो व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरौं, उपभोक्ता मैत्री व्यापार व्यवसाय गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा सैंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बोधराज कुमार राजू ओडा अध्यक्ष एवं पालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 14 परिवार।
0: विवाह जन्म मृत्यु बसाई चराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खान ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं चापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दिपेन्द्र केसी, प्रदेश सभापति, नेपाली कांग्रेस सेन्जा क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश क।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरूप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ 8 ज्ञानले

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: साबित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विश्वनाथ पौडेल अध्यक्ष, सीता थापा उपाध्यक्ष, सुशील कुमार आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं आदिखोला गांव कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि सैंजा।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर बालकृष्ण सुवेदी र गीता सुवेदी, डीएनवाई जनरल स्टोर्स सुवेदी तेल एण्ड कुटानी पिसानी उद्योग वालिङ आठ बीपी चोक, सम्पर्क मोबाइल 9856054313 र 9840134832।
0: हामी कहाँ शुद्ध तोरीको तेल पाइनुका साथै लोकल गहुँको पिठो, लोकल चामल र पिना पनि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर अशोक पंगेनी, एपीएफ फेशन कलेक्शन, वालिङ 8 बगालेटोल, मोबाइल 9847741755।
2: हामी कहाँ विभिन्न ब्रांड का जेन्स फैंसी आइटम, बैग, जूता, चप्पल सुपथ मूल्य में पाइन का साथ ही अनलाइन डिलीवरी पनि गरिन्छ।
0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अर्जुन प्रकाश अर्याल, महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी सैंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नुवा दत्त अरियाल अध्यक्ष एवं धिरकोट उद्योग वाणिज्य संघ परिवार धिरकोट साङ्जा।
2: आफ्नो व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरौं। उपभोक्ता मैत्री व्यापार व्यवसाय गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिका वासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा साइन।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बोधराज कुमार राजू ओडा अध्यक्ष एवं पालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 14 परिवार।
0: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटना घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खाँड ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दामोदर तिवारी ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 8 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराउँ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई, नगर प्रमुख हेमान्य उपाने, उप प्रमुख युवराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर चन्द्र बहादुर गुरुङ गुर्खाली तरकारी फलफूल तथा किराना पसल वालिङ 8 मोडबाट माथि अर्गानिक फोर ल्यान्डको ठीक अगाडि मोबाइल 9815848178।
2: हामी कहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादित ताजा ताजा तरकारी एवं फलफूलहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्नुका साथै किराना सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ।
3: रेडियो आदिखोला 105.4

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: घनश्याम सुवेदी गाउँपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेदीखोला गांव कार्यपालिका को कार्यालय फेदीखोला।

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आधीखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ 8 ग्यामलिन।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कृष्ण खार नगर प्रमुख, कविता तिवारी गैरे उप प्रमुख, जीवन गेवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वालिङ नगर कार्यपालिका को कार्यालय वालिङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ 1 राममाछा शोरूम, भिरकोट 1 बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर बीबी चोको रामुदाई स्टाइल सटिंग सुटिंग टेलरिंग सेन्टर वालिङ आठ मोड़ गरिमा विकास बैंक ओरालोमा। संपर्क मोबाइल 9835564696।
0: हामी कहाँ स्कूल कलेज अफिस का ड्रेस विवाह व्रतबंध का लागि आवश्यक साथ ही कोट पैंट शर्ट सिलाई गर्नुका साथ ही सिलाई संबंधी संपूर्ण काम सुपथ मूल्य में

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कल्पना तिवारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस एवं सांसद गण्डकी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुवा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अर्याल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साइङ्जा।

0: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ सेङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दीपेन्द्र केसी ओडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता एवं भिरकोट नगरपालिका एक नम्बर ओडा कार्यालय परिवार
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गर्छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: साबित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपालीहरू

0: शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: महेश्वर दवाड़ी शाखा प्रमुख एवं माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड परिवार वालिङ शाखा, सम्पर्क फोन 063441300।
2: सुरक्षित बचत एवं आकर्षक ब्याज दरको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर जीत बहादुर सुनार एण्ड सन्स दीपेश जीतुशन चांदी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पन्धेरा जाने बाटो तर्फ पुरानो पसल को ठीक अगाड़ी आपने निवास में संपर्क मोबाइल 9846654123 र 9806601652।
0: हामी कहाँ छापा वाला सुन तथा चांदी का गरगहना पाइनु का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का गहना तैयार पारिन्छ।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग शुभ चिन्तक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर प्रकाश अर्याल, पोशाक बगैंचा, वालिङ आर्ट, नयाँ बजार। सम्पर्क मोबाइल 9855303829।
0: हामी कहाँ स्कूल कलेज तथा अफिस का ड्रेस र सम्पूर्ण फैंसी आइटम पाइनुका साथै हाम्रै कारीगर द्वारा विभिन्न पोशाक सुपथ मूल्य में तैयार पारिन्छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ एक राममाछा शोरूम, बिरकोट एक बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड़ नगरपालिका जाने बाटोमा। मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।